0: मैंने भी खर्च और ढाई ढाई साल बाद भी इसका ब्याज सिर्फ 2.5% है पूरे साल का।
1: क्या बात है। अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी, ऐसा लोन कनाडा तो नहीं धरती पे भी नहीं मिलेगा। 50,000 से लेके 1,17,000 डॉलर इसकी रेंज है। कोई गारंटी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स का थप्पा नहीं लगता, कोई एज लिमिट नहीं है। एक तरफ आप अपना डिप्लोमा हासिल कर रहे हैं बिजनेस का फुली ऑनलाइन, नो एग्जाम्स, ईसी असाइनमेंट्स, दूसरी तरफ फंडिंग गवर्नमेंट से डायरेक्ट, गवर्नमेंट से अपने अकाउंट में हासिल करते हैं।
1: सरांश यार, किसी फ्रेंड को या किसी रिश्तेदार को पूछ लो ना, मुझे पैसा चाहिए, वो भी नहीं देंगे आपको 0% पे।
0: बिल्कुल ऐसा है, तभी लोग रिश्तेदारों पे नहीं जाते, हमारे पास आते हैं और
1: हाँ
0: फंडिंग भी हासिल करते हैं, स्किल भी हासिल करते हैं। प्रॉपर ऑफिस से 8 साल में हजारों को असिस्ट कर चुके हैं।
1: क्या बात है। सरांश पैसे किन्ने के मिल जाते हैं?
0: डिपेंड करता है जी, फैमिली साइज पे अगर आप मान के चलेंगे हस्बैंड वाइफ है दोनों पढ़ते हैं तो अराउंड 60,000 डॉलर, अगर हस्बैंड वाइफ विद 3 किड्स है तो अप टू 170,000 डॉलर। तो रेंज डिपेंड करती है आपके फैमिली साइज पे। आप हमें अभी कॉल करें, आपको क्विक असेसमेंट हम आपको अभी दे देंगे। हमारे ऑफिस आए आप 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, हरंटरी डरी पे। कोई एज लिमिट नहीं है, आसान से कोर्सेज फुली ऑनलाइन फोन पे कंप्यूटर पे अटेंड करें, फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें।
1: वेरी गुड। नंबर एक क्विक है सराज दा, 437-264-3175, 437-264-3175। सो सराज जी, जेडे लोन ने ये किनू मिल सकते हैं, की रिक्वायरमेंट्स ने, की एलिजिबिलिटी है, की प्री रेक्विजिट होने चाहिए ने?
0: हाँ जी, अपने इस देश में पीआर लेने के लिए कितने मेहनत करी है और उसी मेहनत का नतीजा है कि मतलब आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो आप अगर पीआर हैं, प्रोटेक्टेड पर्सन है, सिटीजन है, आप एलिजिबल हैं, ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं एलिजिबल हैं। कोई क्रेडिट चेक नहीं है इसके अंदर, आपका स्कोर चाहे 0 है आप तब भी एलिजिबल हैं। तो मतलब आप बैंक्रप्सी भी आपने कर रखी है, कंज्यूमर प्रपोजल पे भी अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए, कोई मीठी बातें, कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी फ्री लोन है, कोई चालाकी नहीं है इसके अंदर।
1: वेरी गुड सर। कोई बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, ना कोई बड़ियां रिक्वायरमेंटा ने। नंबर एक क्विक है 437-264-3175। तेसराश की ये कोर्सेस सारे ऑनलाइन है?
0: बिल्कुल जी, क्लाइंट्स चूज करते हैं ऑनलाइन सोखे जी कोर्सेज, हम उन्हीं में डील करते हैं। हमारे पास 8 से 10 कोर्स है, आप उसमें से चूज करते हैं। लाइक 3 घंटे क्लास आपने मंडे टू फ्राइडे लगानी है, दैट्स इट। कोई भी इसमें मतलब चालाकी नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है। फंडिंग हासिल करें और हमारी फीस काम होने के बाद फ्लैट फीस $199 है। खाते में आपकी फंडिंग आती है तब आप अपनी ईमानदारी से हमारी छोटी सी फीस देते हैं। अभी भी जो हमें सुन रहे हैं उसमें से 30% क्लाइंट्स रिटेन्ड ही है। 8 साल में बहुतों को असेस्ट कर चुके हैं। कॉल करें, असेसमेंट कराएं, 0% पे गारंटी फ्री लोन हासिल अपने अकाउंट में करें।
1: वेरी गुड। एंड थोड़ी की फीस है सर?
0: $200 में 1 डॉलर कम, 199, वो भी काम होने के बाद। नंबर नोट करें जी, 437-264-3175। कॉल करो, एस्टिमेट लो, 437-264-3175, 437-264-3175।
1: 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175। सरांश और कुछ ऐड करना चाहते हो?
0: लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी हर 2 साल में चेंज होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, आपके असली डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कोई भी कारीगरी नहीं है, कारीगरी नहीं है तो कोई कमीशन नहीं है, कोई हेराफेरी नहीं है। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 साल में $1.5 लाख फैमिली 4 को आएगा। अगर आप 6 महीने बाद ज्वाइन करते हैं तो जब अगस्त 2028 से पॉलिसी चेंज होगी तो आपको 1.5 लाख की जगह क्या पता 1,30,000 ही आए। तो अभी ज्वाइन करें, फंडिंग पूरी हासिल करें।
1: नंबर और एड्रेस जरूर।
0: एड्रेस है जी 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, हरंटारी डरी पे। 5 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं और कोई भी इस पे मतलब सेटिंग नहीं है। नंबर हमारा नोट करें, कॉल अभी करें, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175।
1: थैंक यू सराश, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू जी।
1: वेरी गुड। सो ओके, आपां ना जिंदगी दे विच बड़ी भज दौड़ करते हैं, खास तौर से कैनेडा च। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੂਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ ਉਡਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਧੂ 9 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਿਹਰਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਮੇਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੀਲਸ ਤੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਬਸ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਸਿਰਫ $25 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 25। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 70+ ਨੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ $15 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 4378700001 4378700001 4378700001 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਕੈਲਡਨ ਮਿਤਸੂਬਿਸ਼ੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਛੱਡੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਚਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ। ਸੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 6476782754। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਲਡਨ ਮਿਤਸੂਬਿਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ 6476782754 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ।

0: twist corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
2: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
3: बिल्कुल यार 416-655-2000 बहुत कमाल दे वकील ने देखो जिंदगी च पंगे पै जांदे आ हो जांदा कुछ ना कुछ सो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तां 416-655-2000 तजिंदर नूं कॉल करो

कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत मैं कहना प्यारी शाम है यार। बंदे का जी करता कि बाहर निकलिए, बारबेक्यू खोलिए ते गर्म करिए, ते उत्ते लैम चौपा रखिए, सॉसेजेस रखिए, बर्गर बनाइए, छलियां भुन लीए, वाह वी वाह, बारबेक्यू सीजन इज कमिंग टू एन एंड है। सो चलो कोई गल नहीं, इट्स ओके, बारबेक्यू सीजन भावे एंड हो रहा, बट जिन्ना चिर है उन्ना चिर तो इंजॉय करो, बारबेक्यू करो, बाहर निकलो, हैव अ गुड टाइम, एंड यार दोस्तों सदो को आ यार बैठिए, बहुत चिर हो गया। देखो पंगा ये है, बहुत सारे यार दोस्त मित्र सजने जिन्होंने आप बहुत चिर हो गया बुलाया नहीं, जीता करता बट सारे बिजी ने हुण जिंदगी दे विच विच ना, ज्यों ज्यों उम्र वधदी है तब बिजी बहुत हो जाने हैं। कई यार दोस्त हुण दो चार साल नहीं मिले, कई चलो एक अद्धा साल नहीं मिले, बंदा चेते तो करता बट

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी बुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधु नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
1: 647-706-6640
2: नाले चोपड़ियां नाले दो दो।
3: आहो जी मेनू भी पता नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना यानी दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी दाला मसाले पिकल्स चौल चाह पत्ती फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
2: डेयरी प्रोडक्ट्स स्नैक्स फ्रेश चिकन बीफ गोट मीट सब कुछ मिलूगा। इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे चना भटूरा वेज थाली वेज बिरयानी बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
3: एक बार आओगे ते बार बार आओगे।
2: अनबीटेबल प्राइसेस सेल ऑल टाइम दाना मंडी 1729 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन क्वीन एंड ब्रैमले।
3: कॉल गगन और गुरिंदर एट 905-286-9257।
4: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
5: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावा जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
6: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
7: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4-व्हीलर्स अते 18-व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
5: कॉल करो जे एंड गैरी नू
7: 905-459-5533
5: 905-459-5533
7: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

0: फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स, हुन तीन लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबी को। वधेरे जानकारी ले कॉल करो
1: 200-3-1-1-6-5-01-3-1-1-6-5
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
5: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
6: CCCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਨੋਟਿਸ।

0: Brampton. Major intersection Steeles and Kennedy 90545-12600.
1: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-4146-302-9941।
2: 6 फुट 2 इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
3: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
4: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 905-451-2600, 905-455-2600।
5: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी, ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए, सर्विस भी टॉप नॉट सी, टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी, करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असीं तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। ट्राई तवा किचन फॉर द बेस्ट केटरिंग इन टाउन, फ्रेश फूड, ग्रेट सर्विस एंड अनफॉरगेटेबल टेस्ट। Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton, 905-790-1699, 905-790-1699.
6: पापा पापा, सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
7: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
8: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
9: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।

0: ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੁਆਬਾ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਸ ਤੋਂ ਦੀਪਾਂਸ਼। ਦੀਪਾਂਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 905-673-1400, 905-673-1400 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਟਿਕਟਾਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਸ ਤੋਂ। ਦੀਪਾਂਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਵਿੰਟਰ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ, ਨੰਬਰ 905-673-1400 ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? $965 ਦੀ, $965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਨ ਵੇ ਹੈ ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਡੈਲੀ, ਵਨ ਸਟੋਪ, ਦੋ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਬਾਲਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ 905-673-1400 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ, ਅਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਸ ਹੈ, 1045 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੋਪ, ਦੋ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਟੂ ਡੈਲੀ ਵਨ ਵੇ ਹੈ ਇਹ, 905-673-1400, 905-673-1400 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 647-874-1313 'ਤੇ। ਸਾਰਾਂਸ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੈਸੇ ਹੋ?
1: ਬੜੀਆ ਜੀ, ਬੜੀਆ, ਬਤਾਈਏ
0: ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ। ਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ, ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 437-264-3175, 437-264-3175 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾਂਸ਼, ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ?
1: बिल्कुल जी, डबल कर दिया है। एंड देन इस पर मानते चले, फंडिंग का नाम सुन के हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है, आना चाहिए। लेकिन अब इसमें ये चीज है, अपना असली नाम यूज करके काम करते हो कि असली काम है, असली नाम है, असली काम है। नहीं तो जो लोग फंडिंग का काम करते हैं उनका नाम टोनी रखते हैं रेडियो पे, है ना, तो मतलब ऐसे कुछ अलग सा नाम लगता है। तो इसलिए साफ काम है, 8 साल से हजारों कोशिश कर चुके हैं, गवर्नमेंट आपको फंडिंग देती है जो कि डबल हो गई है। आप स्किल डेवलप करते हैं, आसान से कोर्सेज घर के कंफर्ट से करते हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, फोन या लैपटॉप पे क्लास लगाते हैं। ऑन अदर हैंड आपको आपके खाते में डायरेक्ट गवर्नमेंट से, मेरे में नहीं, आपके खाते में 50,000 से $170,000 तक का लोन आता है, जो कि गारंटी फ्री 0% पे होता है, बहुत टाइम बाद उसकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है।
0: अच्छा सारांश, जैसे आपने बताया कि आपके ही अकाउंट में जाएगा, यानी कि जो एलिजिबल है और जो इस फंड को, इस लोन को लेना चाहते हैं, है ना, तो मतलब ये पक्की बात है, आपके पास तो नहीं पहले आता फिर आप उनको प्रोवाइड करते हो कि सीधे ही जाता है उनके अकाउंट में?
1: आज आपने कोर्स ज्वाइन करा, आपको विद इन अ वीक ईमेल आती है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है NLST, उसमें ईमेल आती है आपको, और उसके बाद अपना बैंक खुद घर पे सेटअप करते हैं। हमारे ज्यादातर क्लाइंट अंकल आंटी तो जो मिडिल एज वाले, हम उन्हें कहते थे बच्चों से करा लो, बच्चे तेज होते हैं यहाँ के आईटी में, उनके बेटे सेट कर देते, बच्चे सेट कर देते घर पे, हम नहीं करते अकाउंट से। और बाकी उनके अकाउंट में 30-90 डेज में फंडिंग खा करके गिर जाती है। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्रेडिट चेक नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर 50 भी आप एलिजिबल है। PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, इतना तो होना ही चाहिए।
0: एलिजिबिलिटी क्या है इसकी?
1: हाँ जी, वही ओंटारियो में कहीं भी रहते हैं आप, कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे आप पेंशन पे हैं, चाहे आप लाइक मैटरनिटी पे हैं, और आप PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन होने चाहिए। आपकी 2025 की नोटिस और असेसमेंट पे इनकम लेस देन $100,000 है, कॉल अभी करें, असेसमेंट अभी कराएं। प्रॉपर ऑफिस है जी, प्रॉपर ऑफिस है, कहीं बाहर नहीं मिलते आपसे। सही काम सही तरीके से 8 साल से कर रहे हैं, हजारों प्रोसेस कर चुके हैं।
0: यानी कि जो विजिटर हैं जिनका कोई स्टेटस नहीं है वो नहीं अप्लाई कर सकते। स्टेटस एक बार ही दोहरा दें फिर से, क्या क्या होना चाहिए जो कि इसके लिए एलिजिबल है?
1: हाँ जी, तो मतलब वही PR सिटीजन या प्रोटेक्टेड पर्सन, गवर्नमेंट अपने लाइक मान के चले आपके जो वोटर है उनके लिए काम करती है एक तरह से, राइट? तो इसलिए आपके आप अपना लाइक एडमिशन कराएं, आसान से कोर्सेज हासिल करें, साथ में डिग्री डिप्लोमा मिलता है एंड में। आप बिजनेस का कोर्स करते हैं 2 साल का, आपको डिग्री भी आ गया, मतलब डिप्लोमा भी आ गया, फुली ऑनलाइन, नो एग्जाम, इजी असाइनमेंट, 2 से 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे, ये नहीं कि पूरे दिन बैठना है, और फेल आप होते नहीं है उसके अंदर, वो हमारी गारंटी है। और अदर हैंड आपके पास 0% पे लोन आता है, 50,000 से 1,70,000 डॉलर, इससे बढ़िया लोन धरती पे ही नहीं है, कनाडा भूल जाओ, कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है मेरी आपके लिए।
0: अच्छा, इसमें ये बताएं जो कोर्सेज हैं उनकी लेंथ कितनी है और कोर्सेज कौन कौन से हैं?
1: हाँ जी, एक अकाउंटिंग का कोर्स है 1 ईयर का, एक बिजनेस का कोर्स है जो कि पॉपुलर है, उसमें फंडिंग डबल आती है, वो 2 साल का है, और हॉस्पिटैलिटी का भी है। स्पेसिफिक वाले कोर्सेज भी हैं, PSW, EPA, बट उसमें हम रिकमेंड नहीं करते। अगर आप इजी कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो हम आपको ये जो फीम बताए हैं उसमें रिकमेंड करते हैं, 2-3 और भी है सप्लाई चेन ऐसा। और बाकी लाइक बिजनेस मोस्ट पॉपुलर, फंडिंग उसमें डबल आती है, 1,70,000 डॉलर तक आती है फैमिली ऑफ 5 को, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, फैमिली ऑफ 4 को $1,50,000 तक फंडिंग आती है 0% पे, बिना गारंटी के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, थप्पे के।
0: Very
1: और
0: good.
1: बहुत टाइम बाद 2.5 साल बाद रिटर्न करना स्टार्ट करना आपने,
0: ठीक है। अच्छा, अपना एड्रेस बताएं और फोन नंबर बताएं जल्दी से।
1: फोन नंबर है जी 437-264-3175, 437-264-3175,

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा, वे आ जा तो मैं नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station.

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दियां ते दो अमृतसर दियां मिल जानगियां
1: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दियां चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80 98
2: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
3: काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करता कि तुहाडा अज्जा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। 1 तो लेके 2 बजे तक वतनों दूर तुहाडे लई पेश कीता जाएगा। साडे स्टूडियो दे नंबर 12 तो 2 बजे तक सेम रहणगे। 905-799-0999 905-799-0999। कोई गलबात करनी है, मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉल अस। छतरी छात्र रिपोर्ट हाजरा। 6:35 ते सुरज आया, 8:02 ते चले जाना। मामा चांसो 7:51 ते शाम नू आएगा, सवेरे 5:50 ते जाएगा। अज दा तापमान 27 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, झखड़ झोले थंडर स्टॉर्म, नेरी नूरी काफी कुछ आएगा। कल नू तापमान 25 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। सैटरडे नू तापमान 26 डिग्री, सूरज चमकदा रहेगा। संडे नू मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, तापमान 28 डिग्री। मंडे नू बदलवाई रहेगी, लेकिन हल्की हल्की स्नो कह रहे, कितों स्नो आ गई ना हो बाबा, बारिश पैंदी रहेगी। तापमान 28 डिग्री और ट्यूजडे नू 30 डिग्री तापमान होणगे। सूरज चमकेगा, बिजली कड़केगी। कहिंदा महाराज की हाल ने, उड़दे आ तोते। जे स्पोर्ट्स दे चलीए, सियाटल सी हॉक जिन्हां ने सुपर बॉल जितया सी पिछले दिनी, ओह जिहड़ी सेल आ अप्रूव कर दित्ती गई है। $9.6 बिलियन च उन्होंने खरीदिया। खरीदने वाले कौन ने? विनोद ते नीरू खोसला। ब्लू जी वाले कल 3-0 नाल केसी नू जिते। 3 गेमां मेरे ख्याल पिछे चल रहे आ वाइल्ड कार्ड कार्ड तो। एदी सीधी जिम्मेवारी जे किसी नू देनी होवे भी कौन वधिया नहीं खेलिया, वह है वलाडी। नंबर फिर नोट कर लो स्टूडियो दे, 905-799-0999 साढ़े नंबर ने। आओ तुहानू ये भी दस दिए, AZ ट्रांसपोर्ट, AZ ड्राइवर चाहिए एवरेस्ट ट्रांसपोर्ट नू। आटो पार्ट दे डेडिकेटेड रूट ने, शाम नू तुसी घरे आ जाना है। सेम ट्रक दे सेम ट्रेलर होएगा, 3000 मील वीक दे दिते जाणगे, ठीक है। नाल दी नाल मिड वेस्ट US ईस्ट लई भी ड्राइवर दी लोड आ। सुनहरी मौका है जी वड्डी फर्म नाल कम करन दा। 905-846-2229 एक्सटेंशन 4।
1: न्यू शिपमेंट आ गई है। बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स से भी अप टू 60% ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस। ए नई नई वैनिटीज दी परचेज ते सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। विजन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक। कॉल 9056711800 905-671-1800।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: आ भेने खरीद लिया गहने?
4: किथे, छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नहीं मिलिया चंगा सोना।
3: ले ए वी गल कोई कहण दी है, सोना ता सोना ही हुंदा, गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
4: गल ता तेरी सही है भेन, किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन?
1: जनक ज्वेलर्स। जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच थानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे। जनक ज्वेलर्स, कॉल 905-230-8800।
5: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आहे ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज़ वी केयर।
0: Are you ready? इक्का जंक्शन ले 6474294040। केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन ले, नो प्रॉब्लम, 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम, 6474294040। तुसी इनारे बैंकुट हॉल या लॉज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम, 6474294040। 647-449-4040।
6: हाय डॉक्टर साहब।
7: हाँ जी
6: डॉक्टर साहब, कान सड़ गया जी मेरा।
7: तुहाडा कान किवें सड़ गया?
6: डॉक्टर साहब मैं ना जी कपड़े प्रेस करदा सी, उधरों फोन आ गया जी, मैं फोन दे प्ले के प्रेस कान नू ला ली।
7: ओहो, पर दूजा कान किवें सड़ गया?
6: एम्बुलेंस नू फोन कर लगा सी जी।
2: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street or call 905-791-4900.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हूँ 3 लोकेशन तो सर्व करते ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca.
4: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options suno chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200. Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: आज खुश तो बात होगी
9: ओ ता होना ही है, जो तो टिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे, ऐ नकदा बनदा ही है।
8: हां, मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है,
9: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा?
10: चल क्या रहे हो पर?
9: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
11: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
9: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड, 905-204-1313, जां tillovideo.com। होर कोई सेवा?
12: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने की बात ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
13: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां।
14: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमीग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमीग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमीग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमीग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: लखा दिला दी धड़कन द सुपरस्टार आमी वेयर
6: मैं किथे बैठे आ करूं आओ जट खप्पी सीट पे बंदूक रख दे
5: टू साउंड लाइव एंड सेल्यूलर पॉइंट प्रेजेंट आमी वेयर लाइव इन टोरंटो August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: Friday, September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला ऐसी बड़ी मॉडल दिखती, उम्मीद करता हूँ इस बार भी किसी आशीर्वाद दोगे।

0: हाय ओए, क्या बात है। कहते हैं ना रोमांस किथे गई। सो बाकी गाने सुन के पता लगता भी पहला सी गया रोमांटिक जमाना, हुण तो बस मतलब नु ही प्यार पुर कीता जांदा। सो के कुछ एक ना बोल जड़े ने वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, थोनू कुछ ना कुछ सिखाते ने, थोनू अंदरों हील करते ने। सो रेडियो उडान ते प्रभ संधु साढ़े वीर वालों ब्रैम्पटन वासियों लिए एक बहुत ही खास तोहफा, जिंदगी नू बदलन ते जीवन दा वल सिखाउण वाला एक शो। सियाने कहिंदे ने पंजाबी सिनेमा दा बहुत ही प्यारा ते रिस्पैक्टेड एक चेहरा जरनैल सिंह जी, इन्हां दा कल नू एक शो नहीं मैं कहूँगा, एक इन्हां नाल मुलाकात है कल नू 410 ते स्टील ते जिहड़ा कोर्टयार्ड मेरियट होटल है उहदे अंदर लिमिटेड सीटां रखियां गईयां। थोनू जिंदगी जीउण दा एक तरीका, जिंदगी च किवें हैप्पीनैस लभणी आ, किवें रिश्तियां नू निभा के रखणा, बड़ियां चीज़ां सिखाईयां जाणगियां। कल नू 6 तों 8 शो है, सीटां बहुत ही लिमिटेड ने क्योंकि बड़ी इंटीमेट जी गलबात है। आई नहीं भी 5000 बंदा बह के, क्योंकि तुसीं नहीं कनैक्ट कर सकते बंदे नू, जिहड़े बंदे नू सुनना वधिया उत्थे सैटअप होवे ते लिमिटेड सीटां होण तां आपां रिलेट कर सकांगे। सो सिर्फ $25 दी टिकट है, जिन्हां दी 70+ उमर है थोड़े लिए मतलब सिर्फ $15 दी टिकट है। प्रभ नूं फोन कर लो 437-870-0001, 437-870-0001, 437-870-0001 दे उत्ते तुसीं कॉल कर सकते हो। साडे नाल सरांश जुड़ चुके ने यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो। सरांश की हाल है?
1: ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ।
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਰਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਰਾਸ਼ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ 8 साल हो गए हैं, बहुत तो कोशिश कर चुके हैं। और लाइक इसमें गवर्नमेंट सपोर्टेड एजुकेशन प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट आपको 50,000 से लेके $1,70,000 तक लोन देती है जो कि 0% पे है। इस पैसे को आप कहीं भी कैसे भी कभी भी खर्च कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर कुछ भी। इससे बढ़िया लोन कहीं भी नहीं है। हर लोन में लाइक आपको लाइक राइट अवे ब्याज देना पड़ता है, राइट अवे किस्त स्टार्ट होती है, इस लोन की किस्तें भी 2.5 साल बाद स्टार्ट है और 0% ब्याज है इसका सिर्फ, और नो गारंटी।
0: वेरी गुड। सो सरांश दा तुसी नंबर नोट करो 437-264-3175-437-264-3175। सरांश, बहुत सारे लोगों को ये यार कि लोन सानू किन्ने तक दा मिलेगा?
1: हाँ जी, डिपेंड करता है आपके फैमिली साइज पे, आपके बच्चे ज्यादा है, फैमिली ऑफ 5 है तो हस्बैंड वाइफ को अराउंड $170,000 तक का लोन मिल जाता है। फैमिली ऑफ 4 है तो $1.5 लाख तक मिल जाता है। तो हमें आप अभी भी कॉल कर सकते हैं, असेसमेंट करा सकते हैं, हमारे ऑफिस आ सकते हैं और आप लाइक जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं हमसे राइट अवे। देयर इज नो लाइक इसमें कुछ भी चलाकी नहीं है, सारा साफ काम है, साफ तरीके से कर रहे हैं।
0: क्या बात है, वेरी गुड। सो सरांश नाल दी नाले इहदे लई डॉक्यूमेंट केड़े केड़े है, की कोई क्रेडिट चेक भी लगता है, केड़े केड़े डॉक्यूमेंट्स ने?
1: डॉक्यूमेंट इसमें मजे की बात यह कि एम्प्लॉयमेंट का कोई डॉक्यूमेंट लगता ही नहीं है इसमें, तो ये नहीं कि आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए जैसे बैंक्स मांगते हैं, राइट। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और लाइक इसमें फंडिंग आपके अकाउंट में 30 sunny days में आ जाती है, मतलब 1 से लेके 3 महीने में आपके खाते में फंडिंग आ जाती है। क्रेडिट चेक है नहीं, क्रेडिट स्कोर आपका 1 भी है, 1 भी, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा आपको यहाँ पे।
0: वेरी गुड। एंड ये जो कोर्सेज ने, जे कोई सरा हुण सपोज करो कोई काम भी कर रहा बंदा, वो फुल टाइम काम कर रहा है, वो भी कर सकते हैं कोर्सेज?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, आप चाहे अनएम्प्लॉयड है, फुल टाइम है, हाउस वाइफ है, उबर ड्राइवर है, पेंशन पे आप एलिजिबल है। स्किल डेवलप करें, आसान से फुली ऑनलाइन कोर्सेज अपने घर के कम्फर्ट से करें, और लाइक एग्जाम्स है, असाइनमेंट्स नहीं है, आपको एंड में डिग्री मिलती, चाहे अकाउंटिंग का करें चाहे बिजनेस का करें। ऑन अदर हैंड आपको $1,00,000 पे सिर्फ साल का ब्याज, $2,500, महीने का ब्याज $200 पे लोन मिलता है।
0: वेरी गुड। सो लोन जेड़ा है थोनू ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ?
1: 2.5% ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ,
0: 2.5% ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਸੋ ਵੈਰੀ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਸਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 437-264-3175-437-264-3175-4. ਸਰਾਸ਼, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
1: ਫੀਸ ਹਮਾਰੀ ਕਾਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ $199 ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਸਾਫ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ, ਇਤਨੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੈਂ, ਕਾਲ ਅਭੀ ਕਰੇ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫਿਸ ਹੈ 218 ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲੇਵਰਡ ਪੇ, ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, 437-264-3175-437-264-3175.
0: ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ,
1: ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਰ ਹੈ, ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਈਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਫੈਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਾਰਡਸ ਆਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੈਨਲਿਨਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ T.Water ਟੈਕਸੀ। ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਅਪਸ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ T.Water ਟੈਕਸੀ। T.Water ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਡੌਕ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ 1 ਕੁਈਨਸ ਕੀ ਈਸਟ ਤੇ, ਯੰਗ ਅਤੇ ਕੁਈਨਸ ਕੀ ਈਸਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਨਰ ਤੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ ਤੇ। T.Water ਟੈਕਸੀ 6473708368। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੌਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। T.Water ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। T.Water ਟੈਕਸੀ, ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਆਈਲੈਂਡ।
2: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ।